सदा कुर्बानी, सावधान हो जाना। दोहरा इसलिए है, किसी सावधान हो जाइए, अरदास करने वास्ते खड़े हो जाइए। हुण जिस वेले सी खड़े हो जाने हैं, अगली गल दूसरी सतगुरु जांदे ने, तोए कर जोड़ करूं अरदास, तुद भावे ताया ने रास। दोए कर कर कहिंदे ने हत्थां नूं, आपां दोवें हाथ जोड़ लैणे ने ते मालक अगे खड़े हो जाना है। इत्थे बस नहीं है कि खड़े हो गए, हाथ जोड़ लै, अरदास हो गई, नहीं। तीसरी गल बड़ी कमाल दी है।

पानी के बहत नाम के जहाज साहेब धनगुरु अर्जुन पाछा सतगुरु जी अपने मुखार बिन तो अपनी रचना तो इना बचन का उच्चारण करते ने हजूर फरमान करते ने प्यारिया गुरु नाल प्रीत किदां दी लाउणी है मालक नाल स्नेह किदां दा जोड़ना है साहब जी सानू ओ रस्ता ओ मार्ग ओ प्यार भरे बचना नाल उन्हां जुगतियां नाल सानू ओ रस्ता दसते ने जिस रस्ते ते जिस मार्ग ते जांदियां तू गुरु नानक नू मिल सकना साहब कृपा करते ने बख्शिश करते ने कलजुगी जीवां ते भाई हजूर कहते ने

पहला मार्ग पहला रास्ता पहली जुगत। सतगुरु कृपा करते ने साहब धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कहते ने प्यारे हा कदी मच्छी नू देख ले उदा पानी नल किन्ना प्यार है उदा जीवन ही पानी है। एक खिन भी ना धीरे एक पल एक क्षण भी ओ नहीं रह सकती दे जे पानी विचों कट दे हो ते भाई उन्हें मर जाने। जे तेरा प्यार इदां दा हो जाए गुरु नाल इदां दा सुने किते तू गुरु नाल कर लवे ते तेरे जीवन विच पलटा ना आ जाए। शायद कहिंदे ने

दूसरा रास्ता, दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत। साहब सानू दसते ने किते जातक नू वेख लै, पपीए नू वेख लै, जेड़ा स्वाती बूंद ते पिछे पपी पपी प्या करदा। साहब बाणी विच कहिंदे ने

है उपदेश कर देने प्यारे, अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धन गुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने अहंकारियां निंदका पिठ दे नाम देव मुख लाए। नामदेव वर्गिया नू सतगुरु ने अपने हिरदे नाल ला रहा, अहंकारियां नू पिठ दे दिती मुख नहीं लाया। जिना नाम जपया सिमरन कीता, भावे कोई वड्डा है भावे कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालियां नू, नाम जपण वालियां नू, सेवा करन वालियां नू मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहिंदे ने मान ना कीजै शरण परी जाए, हंकार ना कर प्यारे, अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उहदी शरण विच आ जाए।

शिव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है। एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया, पातशाह तू मेरे ते कृपा कर, किड्डी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मींह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच्छा,

गुरु नानक दी मोर ला के धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साई कितने गुण गायन करें हजूर बाणी विच कहंदे ने

साहब जी रचना ते इको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक दे गुणा दा अथाह ध्यान करदे होए अपने रचना तो कृपा करदे ने ते आंदे

जे भाई छत्तां समुंदरां दे पानी दी शाही बना ले जावे। कलम करो बन राय सारी जंगल ते सारी बनस्पति दियां कलमां बना लिया जावे।

एडी प्यास है तेरे दीदार दी, एडी आस है तेरे दीदार दी, निर्या मालका कर कृपा मेरे दे। को ऐसा संत मोको फिर है मिला, कोई भाई गुरुदा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरुदेव प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आस लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा च तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंदे ने मन ऐसा नहीं करे, ऐसी प्रीत कर ले जिवें मछली ने पानी नाल कर ली। चात्रक ने पपिए ने स्वाति बूंद नाल कर ली है, भंवरे का प्यार फुल दे नाल है सुगंधी नाल है। जेड़ी प्रीत कदी टुटे ना पातशाह, मेरे मालका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल जुड़ जा।

कीर्तन सिखाण दी तुसी सेवा लै ली है। ये सच्चे पाशाह शुक्र इन्ने खुले पाठ वंडन दी तुसी सेवा लै ली है। सेवक बने प्यारे ओ कमाई संभालनी सीखनी है ते तुहानू बख्शियां कोलों सिखी जाएगी। असी नानक भगती करनी है, रावण भगती नहीं करनी। बाबा नंद सिंह जी ना एक करी इनान करते पे, एक सज्जन खड़ा सी कोल, उदे मन च फुरना बनया, मुंह नहीं बोलिया, कहिंदा बाबा जी का रंग थोड़ा काला है। बाबा जी का रंग काल सावला सी, फुरना ही बने फुरना। बाबा जी का रंग ना गोरा नहीं है, काल सावला जा काला जा। ते बाबा जी गड़वी उत्ते पांदे पांदे ना कहंदे की सोचदे मेरा रंग काला है। ते बाबा जी कहंदे पता क्यों काला है, पाप कर करके काला हो गया। देखो सवा बारह का इशनान, एक सवास बिरथा नहीं जाता, पर मन कितने रखिया सेवक। गुस्सा ना करे, सानू कोई कह दे ना तू काला है या काली है, तो मेरा ख्याल दस श्लोक ना सुना लीए तसली नहीं होगी। महापुरुष का जवाब देखो, महापुरुष का जवाब, पाप कर करके काला हो गया, मैं की करा। धारना बनाते सी ना, वाहिगुरु काली हो गई नाम तो बिना।

सब तन का गुर सतगुर गुर सतगुर जित मिल हर पड़ता भजना तू तन का समर्पण कर मैं तुझ बिन अरे ना।

अमृतमय वाणी का कीर्तन हो रहा है कि मानो अमृत वस रहे झमझम बरसते अमृत और इस अमृत को प्राप्त कौन कर दे हम जिन भिम बरसे अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचार जिन्होंने भाई शब्द न सुने कन्ना कटोरे बना के निरोल अमृत बाणी का रस पीता है तो खुशकिस्मत गुरु नानक दे दर ते सदा ही अमृत हस्त है पर तीले भागा वाले किसी महापुरुष ने लिखे है कि जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे उन्होंने झूठे अमल की लोड़ ही नहीं जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे अठे पैर महल में चानन बरन प्रेम दे दीवे फिर एवें नहीं बलदे भाई दीवे बाबा ईसर सिंह जी महाराज कलेरा वाले महापुरुष फरमाते सन दीवा जगाने वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी पहला तो दीवा बनाइए फिर उसनु पकाइए फिर ओले वास्ते तेल सरसों नपीड़ के करना पैंदा सरसों कितों उगदी बड़ी मेहनत फिर तेल पै गया अजे भी नहीं जगदा वट दी लोड़ ओदे वास्ते कितनी मेहनत करनी पैंदी फिर वट भी लगा रखी है हुण जगाइए भाई दीवा ए सोना दीवा जगाई किवें जगेगा प्यार दे नाल दीवा जगेगा जो भी जग गया दीवा फिर लोग आपे कहेंगे नहीं फलाने घर दीवा जगदे पे आखो सी भाई सारे आखो भाई सरत माई भाई जो मेरे धन गुरु नानक के दरबार च आके जुड़े हो आओ भागा वाले हो अपनी रसना पवित्र करो सेवक के कन सफले करो प्यार आखो सतनाम धन्यवाद जो गुरु के प्यारे जुड़ बैठे हो और गुरु जिसने सानू सबों कुछ दिता है साढ़े वास्ते बारह बारह साल उदासियां धार ली बेदे ने किया सी वीर वे देखना निके निके बच्चे श्री चंद लखनी दास तुसी बाहर चले जाते हो फिर उदास होके मेरे को आ जाते हैं कई दिन बेदे साडा भी कोई बापू है आखो श्री वे अगला भी कोई बापू दूजिया ने

पिता की छाती चढ़ जाती है। पर मेरे दाते ने अपने पुत्रों नु उठा के ते बेबे वाल मुखातर होके कहा, सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले, सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले, रब आप ही पाल सी सारियां नु, जद के रब दे नाल सब दुखी दिसन करा की मैं दुआ दिला रहे। बेबे मेरे निरंकार रब बनाया संसार, दुनिया दुखी है, काम क्रोलो मोहंकार दी अगली सदी है। बेबे मेनू जान दे ना बिठा, इतने संसार रोगी हो चुका है, ए संसार रोगी नाम दारू, नाम दा दारू दिता उस दाते ने जिस दाल गुरु पुरब मना रहे हो, यही दात आती है। आए कर प्यार नाल पढ़ो, पहले सेहत बोले तो पीछे सारी सही संगत, गज के अपनी अपनी हाजरियां लगवा। बाबा जी बचर करते सन, जरा संगत जाके रौला पाता है तो इतों कुछ नहीं लैंता, तो जरा चुप करके बैठा रहा है, शब्द की धारणा नहीं करता। बाबा जी कहते सन, ओ गुरु की दया का चोर है, तो जरा गज के बोलता है तो गुरु नानक के वरते हाजरी लग जाती है, गुरु नानक हाजिर नाजर बैठा। आप लगवाओ हाजरियां, साडा गुरपुरब मनाया सफला हो जाए। प्यारी साध संगत, पहला सेवक बोले पिछे सारी संगत। वाहेगुरु।

इको ही मेरे मन विच तांग होवे कि मैं जाके तेरे दर्शन करां। गुरु अमरदास सच्चे

उल्टी प्यारी टुरना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पीठ ना हो जाती। साथ सगत बोलो श्री तुरते हुए पिछली प्यारी।

क्योंकि मन विच श्रद्धा सी कि ए जल मैं गुरु वास्ते लैके जा रहा ते सच्चे पातशाह दे इस जल दे नाल इशनान कर। जदों जल दी गागर ना टिकन दिती खड़ाक होया अंदरों जुलाहे ने पूछया।

गुरु अंगद देव पातशाह ने आख्या बुलाओ बुलाओ बाबा अमरदास जी। जद आए गुरु अंगद देव पातशाह सिंघासन तो खड़ो गए। अपने सिंघासन ते गुरु अमरदास जी नु बिठाया चरणा ते विच पांच पैसे ते नारियल रख के मत्था टेकिया। साथ सजत बोलो श्री आख्या अज तुहाडी सेवा संपूर्ण होई है क्योंकि इस सेवा दे सदके ही तुसी सानू जित लिया है। इस सेवा दे बल ते ही तुसी सानू रिझा लिया है। ते फिर किडे वर दिते आख्या कौन कहिंदा है कि गुरु अमरदास निथावा है ना भाई। गुरु अंगद देव पातशाह ने वर दिते गुरु

राग कल्याण भुपाली दियां सुरावलियां विच सर्व दुखां नूं निवारण वाले पार ब्रह्म परमेश्वर प्रति इउं जाचना कर रहे ने।

राग प्रभाती दे इस रंजक स्वरूप विच भगत कबीर जी उस खालक दी नूरानी होंद संबंधी समुच्ची लोकाई नू उपदेश दे रहे ने। लोगा परम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक मह खालक, पूर रहे हो सब ठाई।

विभास ते प्रभाती रागां दे सुमेल राग विभास प्रभाती दियां मधुर सुरावलियां विच भगत कबीर जी उपदेश दे रहे ने। प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा राम रतन पाया करत बिचारा।

द्वारका दे मालिक और द्वापर युग दे मालिक भगवान कृष्ण जी ते गरीब सुदामा दोनों ही बचपन दे इको गुरु दे शिष्य, बचपन दोना दा इको गुरु दे पास गुजरिया, मगर ज्यों ज्यों वक्त बीतदा गया वड्डे हो गए सुदामा गरीब रह गया, भगवान कृष्ण महाराजे बन गए, द्वारका नगरी दे मालिक बन गए। ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने बहुत गहरे तल ते जाके भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता नू सामने रखदे होए कुछ अपने विचार फरमान कीते हन पौड़ी विच। कहंदे ने कुछ मित्रता दियां निशानियां दित्तियां ने भगवान कृष्ण बारे ते सुदामे दे बारे के किस तरह दी मित्रता सी। भाई साहब फरमान करदे ने बिप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए लागू होई बामणी मिल जगदीश दलिद्र गवाए। कहंदे ने बिपता दा मारिया दलिद्री सुदामा, सारे कहंदे ने कि ए भगवान कृष्ण जो अज दे मालिक ने ए उन्हां दा बाल सखाई मित्र है। ते एडे वड्डे भगवान कृष्ण महाराजे जेड़े हन द्वारका नगरी दे जेड़े मालिक हन अनेकां गरीबां नूं दान करदे हन सुख दिंदे हन, ते ए बाल सखाई मित्र सताउंदा होया इसनूं सारे कहंदे हन ए बाल सखाई मित्र है, ए सताउंदा है बाल सखाई मित्र, ते फिर भी गरीब है। रोज उसकी पत्नी, क्योंकि ब्राह्मण है सुदामा ते एदी पत्नी नू ब्राह्मणी कहा है, कहंदे ने रोज ब्राह्मणी कहंदी है कि ए सुदामा तू जगदीश नू मिलते सही वो तेरे दुख दूर कर देवेगा। ते भाई साहब इसे मित्रता दियां निशानियां नू दसदे होए अगे फरमान करदे हैं।

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार कहा। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उस नूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन अंतरयामी भगवान कृष्ण। दूरों सुदामे नूं देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाइसा फरमान करदे हन

व्यास जी ने बड़े ही गहरे जाके बड़े ही गहरी विचार विच जाके फरमान कीती। किसे मित्र नू मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जाता, किसे मित्र नू मिलना जाए ते गलवकड़ी विच लिया जाता है, पर किसे मित्र नू मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड़ के भी जाया जा सकता है दूरों देख के, मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं वधे। कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा लै रहे हैं, और प्रदक्षिणा लैके फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हन, ते पैरी पैके सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हन। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हन भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उना दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होने दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली बारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहंदे ने दूरों देखिया देखते सुदामे वल रहे हन, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोना ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे, ते प्रदक्षिणा लई जिस तरह के आप

अनुसार भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता बारे फरमान कर रहे हैं। कहिंदे ने सिंघासन ते बिठा के सुदामे नू जोड़ दिता गुरु दे शब्द नाल। गुरु दे शब्द नाल जो जुड़िया मानो दसम द्वार पहुंच गया। द्वारका नगरी दे मालिक ने नौ द्वारियां विच्चों कढ के दसम द्वार पहुंचा दिता, जिथे उहदे सारे ही माड़े कर्म जिहड़े सन ओह नाश हो गए।

सुदामा गरीब सी, उदे कोल चावल बन्ने हुए सन पोटली दे विच, ते भगवान कृष्ण ने खोए पुछिया कि मेरी भाभी ने की मेरे वास्ते भेजिया है। भाई साहब इहदा कोई जिक्र नहीं करते। भाई साहब कहिंदे हन जिहड़ा दसम द्वार पहुंच गया उसनू ते अपनी होश ही कोई नहीं। ओह की भगवान कृष्ण नू जवाब देवेगा? अंतर ध्यान कर दिता सुदामे नू। कहिंदे ने भगवान कृष्ण ने उस वक्त जदों उहदे लेखे मेटण दा वक्त आया, क्योंकि गुरु शब्द नाल जोड़िया होया सी, ते पोटली चों इक इक चावल दा दाणा कढ के अपने मुंह विच पांदे गए। एक दाणा मुंह विच पाया ते धर्म दे दिता, दूसरा दाणा मुंह विच पाया दंदा थले चबाया ते अर्थ दे दिता, तीसरा दाणा मुंह विच चबाया ते कहंदे ने भाई साहब भाई गुरुदास जी उस दियां सारियां कामनावां पूरियां कर दित्तियां, चौथा दाणा मुंह विच चबाया ते चबा के आशीर्वाद दिता कि जा सुदामा तू मुक्ति भी प्राप्त कर गया है। धर्म अर्थ काम मोख का दाता भगवान कृष्ण ने चारे पदार्थ उसनू दे दिते ते भाई साहब फरमान कर दे।

एक कबीर साहब जी का बेनती का शब्द पांच सत मिनटां विच पढ़ के समय सिर समाप्ति ते पातशाह ने मेहर कीती है जिन्हां जिन्हां ने हाजरियां भरियां हन तुहाडियां हाजरियां पातशाह लेखे लावन। कबीर साहब जी निरंकार दे बूहे अगे कुछ इस तरह की बेनती करते हैं पढ़ के समाप्ति।

चलिए। सिख ने कि चाली चलनी है जिदे गुरु प्रसन्न हो चाली चली, जिदे गुरु की प्रसन्नता मिलनी वो चाली चली, दूजी नहीं चली। सिख कदे भी उस चाली नहीं चलता जिदे कलगियां वाला खुश ना हो। गुरु नूं खुश करिए प्यारी प्यास संगत, जे दुनिया नूं खुश करना चाहते हैं तां गुरु नूं खुश करिए। गुरु किस ते खुश हुंदा है? जिहड़ा गुरु दी चाली चल के गुरु दे हुक्म च रहिंदा। जो भी गुरु का हुक्म, अमृत छकना, सोने दाड़े केस रखना, गुरबाणी नाल जुड़ना, सच धर्म दी किरत करनी, सच बोलना, यह है गुरु दी चाली। तो जिहड़ा सिख है वह गुरु दी चाली चलेगा। फिर गुरु दी चाली केड़ी?